साथ ही सहयोगी के

उसे अतक

0: Siyamakarnika. Parivartan. Karnika. Or attention.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। देख

को संपन्न करना है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल result.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Evan Levine.

بی اگر من فیسٹ سنکلپ کی طرف لے جاتا تو لگا جیسے برہما باپ نے روز

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्प संग

0: sempre si incano.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने, या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्का दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो सिक्का दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भरपूर कर

0: angemause. Gianni mit Baue van der Mann Bau automatically a jet. Tu chikaro kya chama hua
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए मन में आता है ना कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वो शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है ये हो,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सौगात कोई वापस लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है, लेकिन आ जाती। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वो करने चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है लाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन शरद के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा बच्चे को ये तो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स

0: mana ke Malik? Cik mana ko ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहां नहीं, यहां रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहां तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध बन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे ये के नहीं चले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना, जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते, क्योंकि संगम युग का समय बहुत है छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा, सबसे ज्यादा संगम युग के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान पाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता मिला है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति और गारंटी है। 21 जन्म फुल आते नहीं, बोना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे। कई बच्चे समझते हैं कि एक दो मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो दो मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार दो मिनट नहीं, दो मास भी नहीं, दो वर्ष के समान इंद्रिय सुख
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन

उसकी कमा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा लगता है, वो मांग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करो। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते साथ देते हैं। लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखने हैं ना। ये तो हुआ दो घंटे का साथ, सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन सभी के दिल में छोड़ना है और क्या बनना है।

παρασκήνια.

बच्चे के लिए क्या चाहता है।

Some button jazz.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Yes.

Oh, shit.

0: பரம்தாம்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Oh.

Yes.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, मिला जुला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम,
4: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार बन बाप समान न्यारे और प्यारे। बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज, लेकिन मैं करण

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये रिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही है जो कामन शब्द है, मुश्किल भी नहीं।

0: तो सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हुई आत्मा, मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलूं, मैं आत्मा, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो, पहले को मेरा बाबा, पीछे मेरा ये रुमाल, मेरा साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा, मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आए, मैं शब्द सामने। ये नेचर और नेचुरल बनाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है, विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। Peace.

0: easy. Podinating. Someone me ow. Now. Lekin tuhai milne ke karan. Dono taraf. Niyam parma. Aisa easy bhi nahi jo. जैसे कहावत है ज्यादा मीठे पर चीटियां बहुत आती तो इतना इजी भी नहीं लेकिन डबल लाइट रहेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जमा करने में

0: se prestete a no usar, cállame la gana. Yo cállame la gana. Estete tu ara, prestete, copa danzate, os cachaba.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मैं

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष आप में है तो पास विधान हो जाए। इसको इमर्ज रखना, सान शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प और

0: संदेश देने का। तो फिर संकल्प को समाप्त शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख अपने भाई बहनों को दे तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा। अच्छा ही
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ये
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, पाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन समाप्त करो। ये सुख्यम मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता, जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखना। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, बाहर नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, न पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालू। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, इशारा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोच सोचती है ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, सभी पाप के साथ ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ, पाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते है ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से का वायुमंडल फैलाओ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के बच्चों से

Last number, Bio.

见。

This is so much.

0: εσύ. Εκτός είσαι. Αργέ παρμάτα πιάρι.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर कर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल फॉरेनर्स निमित्त बने सारे विश्व में इस दिल्ली के प्रोग्राम से भारत में अच्छी फैली। इसलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज कर जगाएंगे, जगा रही है और आगे भी ऐसे VIP तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे, उनका अनुभव भारत वालों को जगाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बना, खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट

0: तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल सीजन आएगी। दिल शिकस्त नहीं हो क्योंकि श्री मत को तो मानना ना है। श्री मत परमान कार्य किया इसीलिए श्री मत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना। यही आप दिव्या बनेंगे आपके पाँव पर पड़ेंगे तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे। तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे जो आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल की

0: इज्जत बढ़ाए,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से देखते हैं, वर्तमान, स्वराज, अधिकारी। अभी भी राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। Check।

वश में विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी योगी होना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Spirena. Podsjeće. Kjaseće. Shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

शरद का समय नहीं होगा, अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की बात रहा। शरद का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। Peace.

Щеретки та сидять.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये मिलन विचित्र है, सब इस बात में वाह बाबा वाह कह रहे, लेकिन हर एक अपने अपने दिल से अपने

Sí, Mohsen. Harbacak.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Revise.

0: சோச்சுன்னா
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

चमकते रहते और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक सबसे साथ होते भी विशेष चमकती जैसे आकाश में is

Almost.

सभी पहुंच गए सत्य।

Ciao.

Mrs.

0: सारे चक्कर में इतने श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Bob.

चेक करो, तीनों सेवाओं में कितने परसेंट सेवा की वजह में तो बाप दादा ने भी सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अभी मनसा सूक्ष्म वाइब्रेशन
Especialmente.

विश्व कल्याणी का स्वरूप। इमर्ज करो, विश्व कल्याण में स्वकल्याण, सुदैव और सहज हो जाए। क्योंकि अगर

चक्कर लगा के चारों देश विदेश के

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अनेक स्वरूप।

Tja, nix.

Oh my God.

इंसान को अपना बनाने से।

80.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की

Radio.

essa prestar a tia, até a tia.

Summer.

0: साकार नहीं होना थे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सर्वा बच्चों को मीठे मीठे का, दो चार करवे और बाकी मीठे का खा। फिर भी ऐसी आत्माओं के वृद्ध भी सदा रहम दिल बने, सागर बने। लेकिन अच्छा आपने अपने वृत्ति में किसी के पृथ्वी अगर नेगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो छुट्टी है, अगर फायदा नहीं है परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। वो बाप दादा देखते हैं उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेज फुल बनना अलग चीज है। नॉलेज बनना रंग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रंग है। क्योंकि अपने में मोटाव, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम नुकसान होता। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माए संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता। लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का परिवर्तन सिक्का से परिवर्तन बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन के प्यार स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसी सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी मास्टर दाता हो, जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे वैसे तो सभी का काम ये है। कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का सने ले जाए, कुछ

желание. Отрешись. Только сане. Достигай белизны. Son.

0: Sabéis que para amar yo ofrezco broma cobar, cobar y somaste honco ese. Se va a me pedir en
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी।

sunken

चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते, इसीलिए

0: विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं बन से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: करके उसको खत्म कर, जमा नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और जान चार चांद लगाओ, ये बाप दादा को अचल। तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, बढ़ाएंगे ना, सभी ने उठाया, हम सब एक है। ये तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके, इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप भी फरिश्ता ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे। फरिश्ता ड्रेस पे फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फरिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल कर देते जाना, बोलना नहीं, फरिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर कितनी चमकती हुई। सुना ये ड्रिल भूलना नहीं, वस्त्र बदली करना दिन में जितना वार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रद तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो। हाथ तक के फिरती वाला होगा।

sua idade. Charla.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अन्नपूर्ति कराना क्षमा के ऊपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाए है उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा सेवा में कोर्स कराने चाहिए। इससे साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात पाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और क्या जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का हर बच्चे से बहुत

old one name.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yeah.

கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

चलते फिरते दे ही अब हमारे नहीं बनते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं है तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ, अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो, तो वो वरदान आपका अमर वरदान हो जाए। क्योंकि वरदान के विशेष आत्माएं भक्तों को भी वरदान मिलता है, लेकिन वो अल्प काल का एक जन्म के लिए आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। इसलिए वरदान स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, श्रम स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो, वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी वाला नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace.

Oh, damn.

çok

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज अकट अवनाशी खसानों के मालिक Joke.

Sí.

Swarat. Sivadvara. Punyakakata. Apsabibi. Yeah.

Oh, no.

Sarva Kasanoko Chamakarniki Chamakarniki.

Siapikan nomor pot.

Chamito es nazo.

Dreszcz.

Yes.

0: निश्चित अनुभव करेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

servicio. Sé que te napiares, amigo. Mato van de base. Que se va con. Deca. Zapato cuchote. Lo que vi que se machen genre. Toma tu pan de vacío aquí. Y se va acá. Va aquí. Pot para. Va tu pan de vacío. चाय भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के बोली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के भी आते हैं और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन के हर आत्मा को बहुत रिकॉर्ड से देखते हैं। सबसे मुख से निकलता है मधुबन से आई है मधुबन से तो मधुबन वाले

0: कष्ट करने का लक्ष्य रखकर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो खुश रहते हैं।

0: 5G.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि बेशक से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार भी नहीं चला।

faire ton fouet. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: पावरफुल नहीं बनाया, जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है, जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो। जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग अग्नि नाम निशान समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते हैं ना, पसम होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ, जिस स्वरूप में रहने जाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

grissom.

me.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। So

विश्व के परिवर्तन

0: me.
1: Check.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse Saints.

Peace.

假装烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से सता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

essai, aber.

0: चप जाओ जैसे जाओ, जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

así, grotante. Mano. Abyectio. Que amará a Billy. Mom.

उनकी वृद्धा व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना, इसके लिए उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से

आदत रख के नहीं, तो मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोच आफर मैंने करूं ये रहा।

0: कुछ भी लगाव नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं ठीक है। आप फर्क किया और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करें।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे ने में दो तो जोड़ने में संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Oh yeah।

0: sé qué decir. Mira, mamá. Isle. Bab kabhi ati pyar. Sirf bab dada ek baat fir se yaad dila raha hai ki apna chehra sada khushnima khushi mein chamakta rahe. Baat chali jaye lekin khushi nahi. संगम योग की खुशी परमात्म गिफ्ट है तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिला तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी सबने खाई सदा खाते रहना इसमें कोई बीमारी नहीं होगी अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: परम धाम निवासी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से मिटा सकते। अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन को मिटाना। जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मानक के परेशानी के आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, अपो में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन कुछ सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम कर आपका है। डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिलपन, सब शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी तक पांच विकारों के व्यर्थ संग

हिपोथेक करके। कमी

Se o Amir fizesse parte de mim, e caminho. Oh.

என்ன சொன்னமே செய் ஜெயின் அவமான் யான் தூசரே சப்தம்

0: अब समान बनना कोई
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Seemann. Hola.

Sí.

Yes.

Sydney. Lincoln.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे जमा करेंगे उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, स्वयं शुभ भावना शुभ कामना के तो इतने पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा बदल नहीं सकते हो। सेकंड नंबर, अगर आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतिता है चाहे पापी है चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, ये पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके दिल पे कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

के बाबा मेरे बाबा हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा क्योंकि ये प्यार बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार ये सारे कलप

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर कोई से

विशिष्ट बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी।

forgive me. Be seated. Agar manar buti ko free raha, to ghabrayenge. Manar buti ko light house. Light feeling. Is kaadi mein busy rahenge. To busy atma ko bhaya nahi hoga, saakhi bano. Sada apne कोई भी हाल चलो अपने बुद्धि को सदाई क्लियर रखना क्यों क्या मैं समय अनुसार

0: समझा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मास्टर सर्वशक्ति

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: personal dear reality. Kitne uchi hai. Anadi roop mein bhi dekho. Jab aap atmaye param dham mein rehti.
1: Yeah.
0: चार फुट पांच फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया कुमारियां बैठी है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चाहते नहीं।

Yes.

Nossa!

sin que nada agradece.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे रहते हो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। चलेंगे ना, गोली चलाते भी है और रंग लगाते भी है। तो आप सभी सो

0: சிவன் பேக் டிக்ஷனரி
1: சொன்ன.

しちゃった。アフトチョパブケソンスカールウォーアブケソンスカール。

0: Санкалапка. Апанесе.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्रक्यान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि पाप से दिल का सने की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी सने, सने नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते। क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सनेही पाप का, सनेही परिवार का, सनेही सुतेही बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देखते। तो सिर्फ भाषण वाले नहीं, पास नया स्वरूप बन। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना, गिरे हुए को नहीं। ओ माय गॉड, उत्साह भरा हो। सुने का वायुमंडल वाला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।